0: ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं, क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखे नहीं ठहराया? और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मूजिब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को माश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार में बरसाया ताकि हम उससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग।
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज़ भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
4: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: मुझे ख्याल में ही इधर हफ्ते ताई ईरान सा मुआहदो थी दो इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू ए हिजबुल्लाह सा राबतन दौरान जंगबंदी ते इतफाक थी पियो आए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आए तो बेरूत में काबिल फौज न मोकली विधी ए जबकि फौजी दस्ता रस्ते में हुआ उन्होंने वापस मोटाए पियो आए ईरान तरफा पैगाम के मोतरी जो मतलब वो ना है तो ईरान ते बम किराने शुरू कर छिंदी बहरी नाकाबंदी जारी रही अस उन वक्त जो इंतजार कदी जडे ईरान अमेरिका लाए काबिले कबूल शर्तन ते डील करण लाए तैयार हों। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जो दखण लेबनान ते हमला जारी रखने जो ला इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू जो आए तो अमरीकी सदर ते वाज़े करे छो आए हिजबुल्लाह हमला न रोकया तो अस बेरूत हमलो कंदासी असा मौकफ तब्दील न थो है इसराइली फौज तय थियल मनसूबे मुताबिक दखण लेबनान में कार्रवाई जारी रखी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लेबनान में जंग जारी रखने ते इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के चरियो करार दी छो तुझे करतूतों के करे अज सजी दुनिया इसराइल का नफरत करे थी। अमरीकी वेबसाइट मौजूद सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से फोन से गालबोल कंदे चे तो हाँ लेबनान से को भी हमलो न थियण घुर्जे इसराइल बेरूत हमलो कर तो दुनिया में वधीक अकेलाइप जो शिकार थी वो फोन से गालबोल दौरान सदर ट्रंप नेतन्याहू के ना शुक्र करार दीदे चो तो आउं तुझे खिल बचाए रो आया आ न हो तो करप्शन केस में जेल में हुए हाँ। लेबनान से इसराइली हमल बाद ईरान अमेरिका से अमन गाल रोके छड़ी नेतन्याहू की बेरूत से हमल की धमकी बाद ईरानी फौज में उत्तर इसराइल के शहर के इलाका खाली करने की वार्निंग दी छी। वाजदारा ने इनकलाब चो तो बेरूत से हमला थे तो इसराइली नुकसान का बचने ला उतरिया इलाका खाली कर हलिया वन ईरानी मीडिया मूजिब इसराइल जहा लेबनान से हमला जारी रहा था अमरीका इसराइल विच में जारी जंगबंदी खत्म थी सके थी फिलहाल अमरीका से अमन गाल पैगाम से रोको पो है। ईरान पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में शिकताण घटाण ए जंगबंदी बरकरार रखने लाइ कोशिश जारी रखने की दरख्वास्त करे छी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ए ईरानी परदेही वजीर अब्बास राग्ची विच में टेलीफोनिक राब्तो जंगबंदी मुआहदो ए खिते की ताजी सूरत हाल से गाल बोल अब्बास राग्ची चो तो खिते में शिकताण घटाने लाइ पाकिस्तान जो तामीरी किरदार सारा जुगो है इस्लामाबाद मौजूदा सूरत हाल में तकरार घटाने में मदद जारी रखे ए जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश की हिमायत करे। ईरानी पति वजीर अब्बास राग्ची जो लेबनान में इसराइल की जंगबंदी के भंकड़न से सख्त खदशन जो इजहार परदेही खाते मूजिब गालबोल दौरान पाकिस्तानी नायब वजीर आजम ए परदेही वजीर इसहाक डार जोर दिनों तो मौजूदा मुफाहमत के बरकरार रखने लाए जंगबंदी जो तसलसल जरूरी है। यूरोपीय यूनियन के वफद के वजीर आजम ए फील्ड मार्शल से मुलाकात बतरफन लागापन इलाके वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा खिते में जटादार अमन के कायम लाए सफारतकारी के जोर पर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0385769
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ashik Honda Showroom Mehrapur, Atlas Honda Motorcycle Club Pur Etmad, Aima Akhtar 3S Dealer. आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां मुआहिदो थियण जे लाइ पुरउमीद। तेहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगाम जी मुअतली ते ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐं हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआहिदे बाद जंगबंदीअ में वाधि थींदी ऐं अबना हरमूज में बि बहरी ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरकरार।

इसराइल लबनान ते हमला बंद न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। ईरानी फौज जवाब देण जे लाइ मुकमल तौर ते तैयार आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे कौमी सलामती बाबा सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरानी फौज धमकी नाहे ॾींदी, फैसलनि ते अमल कंदी आहे। खिते में मौजूद अमेरिकी फौज बि नतीजा भोगींदी।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी हाणी अवांजे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार

से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, यू आर ट्यूनिंग इन टू जियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, सर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आकर मेरा साथ रहता है, आज भी रहेगा। प्रोग्राम में वक्त की बात की जाए तो 11:23 पाकिस्तान का मेयारी वक्त है। तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा होगा, नहीं बज रहा तो बजा लें, अपनी घड़ी की सुइयों को दुरुस्त कर लें। इसके अलावा तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत।

मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न सो टुडे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए जहाँ भी रहे खुश रहे हंसते मुस्कुराते रहे. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे आयान सर बिस्मिल्लाह. And welcome into जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. इस गाने के साथ ही हम चलेंगे आगे. स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है.

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303 5592120
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9600-8519।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा
3: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: ने गलत गेस किया. खैर, हाफिज लखमीर भाई कैसे ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है. तबीयत ठीक है आपकी?
0: जी तबीयत ठीक ठाक. मुझे ये बताइएगा कि गाना सुनाएंगे, गाना है कोई?
1: जी बिल्कुल सुनाएंगे.
0: सुनाए
1: तो मुझे.

0: ओके, ये गाने का टाइटल क्या है और किसका गाना है?
1: ये मनोहर मंथन मलाई का गाना है, तुझे ना ये कसूर गाल नसी बजिया।
0: तुझे ना ये कसूर
1: गाल नसी बजिया।
0: ओके, और सिंगर क्या बताया?
1: हमारे दोस्त है मोहम्मद ताहिर साहब, वकील अली सोलंकी साहब, हाफिज सावर गिरी साहब और जवान मोहन पत्री शमानी साहब, और जो भी सुन रहे हैं हमारे दोस्त रेस श्याम मोहम्मद अबरो साहब, और जो भी सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 03000113488

0: Okay, Ji, next caller. Hello. Okay, hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, Ismail Kishore. Kaise hai, thik thak?
1: Shukar Allah ka, aap sunaye?
0: Alhamdulillah, Ji. Itne time baad call kar rahe, lagai nahi thi ya lagi nahi thi?
1: Aap kab se aa rahi?
0: मैं तो ईद के बाद से आ रही हूँ और ईद से पहले मैं आ नहीं रही थी और ईद पे मैं आई थी.
1: ये तो जवाब नहीं हुआ.
0: हाँ, ये है कि मैं एक हफ्ते की छुट्टियों पे चली गई थी. वेकेशन.
1: मुझे लग रहा है आपका सिलेंडर शायद खराब है. एक हफ्ते नहीं, तकरीबन 15 दिन बाद आई हूँ.
0: अच्छा, 15 दिन बाद आई हूँ मैं. मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 12 दिन बाद आई हूँ, 12-13 दिन बाद.
1: बस ये कहते हैं ना, दिल में जिसको थोड़ी सी जगह दो ना, वो तकलीफ देता है.
0: अच्छा, वो बंदा छुट्टियों पे ना जाए, वो बंदा घूमे नहीं गई.
1: तो बंदा बताया तो सही ना.
0: वो मैं बताऊंगी ना, अपनी पोस्ट के थ्रू बताऊंगी. मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी सब कुछ. देखे मैं कहाँ कहाँ गई थी, मैं क्या क्या एक्सप्लोर करके आई
1: हूँ.
0: अच्छा, अभी जो है ना, ईद की पोस्ट हुई है. हाँ, ये है कि ईद से पहले जहाँ मैं जिस जगह पे घूमने गई हूँ, वहाँ की जो मैंने चीजें एक्सप्लोर की हैं, वो सब कुछ अभी पोस्ट करना बाकी है. वो कंटेंट अभी बनना बाकी है. और तो मैं कुछ करती नहीं, बस क्या करें, यही तो करते हैं हम कि हम कुछ नहीं करते. अच्छा अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि गाना सुनाना है, गाना है कोई?
1: जी जी है, एक पर्सनल सॉन्ग.
0: हाँ जी, बोले सुनाए.
1: बोलने वाला नहीं, गाने वाला.
0: अच्छा, गाए सुनाए.
1: मोहब्बत के भरे बाजार में रुसवा किया तूने, मोहब्बत के भरे बाजार में रुसवा किया तूने. ए सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसी तेरी खुदगर्दी.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं यहाँ से?
1: हाफिज सावल गोरो से बात कर रहा हूँ।
0: हाफिज सावल भाई, कैसे? ठीक ठाक, परफेक्ट हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी आपका
0: गाना सुनाएंगे?
1: जी जी
0: तो सुनाए।
1: मंताज मलिक।
0: हाँ जी।
1: तो यार
0: तू जो सिंगार ठरा, ये गाने का नाम है? ओके तोसा
1: मेरे दोस्त है।
0: हाँ जी, ये मैं सर्च कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। 03000। ये वाला गाना मैं देख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ और शायद मुझे मिल जाए।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे कौन है कहाँ से। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से।
1: आशिफ अली जाकर लारका से आपका बेहतरीन प्रोग्राम जिंदगी दिलवाल सुन रहा हूँ।
0: ओके, गाना सुनाएंगे।
1: फरजाना बाग का गाना है, लगी प्यार दिल का दिल तो महबूब भली माना करमा। ये गाना सुनाओ, आप नहीं सुनाती हो मेरा गाना।
0: अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं।
1: आपकी मेहरबानी, आप अपना ख्याल रखो। खुदा
0: ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे।
1: नहीं, देखो यार, 45 वाली ब्रेक का ना हुआ नवस्थ गटो ब्रेक गटो।
0: चले जी, थैंक यू सो मच। और ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट गुजारा करेंगे हम। और गाना प्ले कर चुकी हूँ, साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी। काशिफ ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी। ठीक है, ये कहना है, काशिफ ने कच्ची कलियां कांच के कटोरे में केयरफुली कमाल से रख दी। छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक दोनों के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वादो थियण जे लाइ पुरमी तहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पैगामनि जी मुअत्तली ते ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदी ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआदे बाद जंगबंदी में वाधि थींदी ऐं अब्दा हरबूज़ में बि बहरी ट्रैफिक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे रोकण बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो ॾखण लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। बैरूत ते बि हमलनि वारी धमकी बरकरार।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां फोन ते ॻाल्हि दौरान नेतन्याहू ते सख़्त कावड़ जो इज़हार खेसि नाशुकुरु ऐं चर करार ॾेई छॾियो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब ट्रंप नेतन्याहू खे लबनान ते हमला जारी रखण ते धड़का ॾिना छोकिरनि जो चयो। सदर ट्रंप चयो त आउं तुंहिंजी खल बचायो आहियां, आउं न हुजा हा त तूं करप्शन जे समय जेल में हुजी हा। ट्रंप जी ॻाल्हि ॿोल दौरान नेतन्याहू रुगो ओके ओके चवंदो रहियो। इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकिरंदा। ईरानी फ़ौज जवाब ॾियण जे लाइ मुकमल तौर ते तयारु आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती जे बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरानी फ़ौज धमकी नाहे ॾींदी, फ़ैसलनि ते अमल कंदी आहे। ख़िते में मौजूद अमेरिकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। पाकिस्तान पारां लबनान ते इसराइल हमलनि जी सख़्त मज़म्मत। लबनान ते हमला फौरी तौर रोकण जो मुतालबो। गॾियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त पाकिस्तान लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत करे थो। इसराइली हमला आलमी क़ानूननि जी भञकड़ी आहिनि। जटादार अमन रुगो ॻाल्हियुनि वसीले ई मुमकिन न आहे। पाकिस्तान लबनान जी हुकूमत अवामी यकजहतीअ जो इज़हार करे थो। पाकिस्तान शिकतार जे ख़ात्मे जे लाइ पंहिंजूं सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो। डरकी बसा रेलवे ट्रैक तां औरत ऐं ॿार जो लाश थे सुञाणप न थी सघी। पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल करे जांच शुरू करे छॾी। रेलवे पुलिस चयो आहे त लाश माउ ऐं ॿार जा थी सघनि था जेके राति जो देरि सां ट्रेन मां किरी फोत थिया आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। वापडा जी इम्कानी निजकारी ख़िलाफ़ मुलाज़मनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। वापडा मुलाज़मनि टनवादम पडीदन सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया। वापडा जी निजकारीअ वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। वापडा मुलाज़मनि चयो त इदारो खानगाइण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। फैज़गंज तालुके में बदमनीअ ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शहरनि जा टिनि हंधनि ते धरणा, ट्रैफिक अटल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। शहरनि फैज़गंज में वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे महिराण हाईवे जे टिनि हंधनि ते धरणा हया। तालुके में अमन बहाल कराइण जो मुतालबो।

0: नसीराबाद जो गोठ खाई कलोड़ो बाहरा दरई जमीन ता पीरसन जो लाशत गोठ मिठल चांदे वासी पीरसन मोहम्मद परेज चांदे जो तशद थियल लाश मिलियो मकतूल जे वासन चयो आहे त संगावती तकरार था बिरादरी जे माण्हुनि तशद करे पीरसन खे कतल कयो आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300 385 569 0300 3855 69।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 0242460100।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

कौन सी पर्ची? अच्छा वो पर्ची पे नहीं होता, वो असल में मेरे फोन पे ही जो है ना खुला होता है सब कुछ. सो वो एकदम से जो है ना गायब हो जाता है अगर मैं कुछ और चला रही होती हूँ फोन पे, तो फिर मेरा टंग ट्विस्टर ना गुम हो जाता है. अच्छा खैर गाना हम प्ले कर रहे हैं, गाना बहुत अच्छा है, सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: सक्खर FM 88
1: सक्खर की आवाज।

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का, एक बजने में बहुत कम वक्त बाकी रह चुका है। लास्ट लकी कॉलर भी लेते हैं और चेक करते हैं लास्ट में कौन हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कॉल हो गई है हैंग। खैर कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि आज का जो टंग ट्विस्टर है वो किसने ज्यादा अच्छा अच्छा और सही सही बोला है। सो दैट आज का जो टंग ट्विस्टर है वो बोला है, एक तो मिसेज अली ने बोला है और दूसरा जो टंग ट्विस्टर बोला है ना वो बोला है सागर भाई ने। तो इन दोनों ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है। मिसेज अली ने बहुत स्पीड में, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोला है और इसके अलावा जी सागर भाई ने शुरू में टंग ट्विस्टर को कह के दिखाया है और क्या कमाल का टंग ट्विस्टर उन्होंने बोला है। तो इसी बात पे गाना भी होगा और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक लास्ट एंड लकी कॉलर ले लूँ।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईंदड़ हफ़्ते ताईं ईरान सां वाइदो थियण जे लाइ पुरउमीद। तहरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहण जी बि दावा। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त पैगामनि जी मुअतली थी ईरान मथां बम किराए नथा सघूं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हिज़्बुल्लाह सां लबनान में जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ थियो आहे। इसराइल बैरूत ते हमला न कंदो ऐं नई फ़ौज मोकिलींदो। ईरान सां मुआदे बाद जंगबंदीअ में वाधि थींदी ऐं अबना हरमूज़ में बि पहिरीं ट्रैफ़िक बहाल थी वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे रोकण बावजूदि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो लबनान ते हमला जारी रखण जो ऐलान। उते बि हमलनि वारी धमकी बरक़रार। ईरान लबनान ते हमला जारी रहण ते अमेरिका सां ॻाल्हि रोकण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाब ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम वज़ीदी चयो आहे त इसराइल लबनान ते हमला बंदि न कया त संगीन नतीजा निकरंदा। खिते में मौजूद अमेरिकी फ़ौज बि नतीजा भोगींदी। अलकुदस फ़ौज जे कमांडर इस्माइल कानी चयो आहे त लबनान ऐं गज़ा में इसराइली कार्रवायूं मज़ामत ते मजबूर कंदियूं। बाबर मंदब में बि आबनाए हरमूज़ जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी सघे थी।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां फोन ते ॻाल्हि दौरान नेतन्याहू ते सख़्त कावड़ जो इज़हार खेसि नाशुकरो ऐं चरियो करार ॾेई छॾियो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब ट्रंप नेतन्याहू खे लबनान ते हमला जारी रखण ते दरकार ॾिना ऐं बैरूत ते हमला रोकण जो चयो। सदर ट्रंप चयो तुंहिंजी ख़ल बचाए रहियो हुजां हा त तूं करप्शन केस में जेल में हुजी हा। ट्रंप जी ॻाल्हि दौरान नेतन्याहू रुगो ओके ओके चवंदो रहियो। पाकिस्तान पारां लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत। लबनान ते हमला फौरी तौर रोकण जो मुतालबो। ॻंढियल क़ौमुनि में पाकिस्तान जे मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार चयो आहे त पाकिस्तान लबनान ते इसराइली हमलनि जी सख़्त मज़म्मत करे थो। इसराइली हमला आलमी क़ानून जी भञकड़ी आहिनि। जटादार अमन रुगबानी वसीले ई मुमकिन आहे। पाकिस्तान लबनान जी हुकूमत अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार करे थो। पाकिस्तान शिकतार जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सफ़ारती कोशिशूं जारी रखंदो।

कराची प्रेस क्लब आॾो सिंध पेंशनर्स ग्रैंड अलायंस ऐं ग्रेवा सिंध तरफ़ां मुतालबनि जी मञता लाइ एतिजाज़ ग्रुप इंश्योरेंस पघार में हिकु जेतिरो जेतिरी वाध करण जो मुतालबो रिटायर्ड मुलाज़िमनि चयो त मुतालबा जाइज़ आहिनि हुकूमत सिंध सरकार रिटायर्ड मुलाज़िमनि जा मुतालबा तस्लीम करे

0: बहरकी भरसा रेलवे ट्रैक तां औरत ऐं ॿार जो लाश हथे सुञाणप नथी सघी। पुलिस लाश अस्पताल मुंतकी करे जांच शुरू करे छॾी। रेलवे पुलिस चयो आहे त लाश माउ ऐं संदसि ॿार जा थी सघनि था, जेके राति जो देर सां ट्रेन मां किरी फोत थिया हुजनि। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। बाबरा जी इम्कानी निचकारी ख़िलाफ़ मुलाज़मनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। बाबरा मुलाज़मनि खैरपुर, सखर, सेवन, दादू, टंडवादम, परीदन, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया। बाबरा जी निचकारी वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। बाबरा मुलाज़मनि चयो त इदारो ख़ानगाइण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूलु न कयो वेंदो। फैज़गंज तालुके में बदमनी ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शहरनि जा टिनि हंधनि ते धरणा, ट्रैफ़िक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। शहरनि फैज़गंज में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे महिराण हाईवे जे टिनि हंधनि ते धरणा आया। तालुके में अमन बहाल कराइण जो मुतालबो। नसीराबाद वेझो ॻोठ खदाई कलोड़ा ॿाहिरां ज़रई ज़मीन तां पीसण जो तशद थियल लाश थे। ॻोठ मिठल चांडियो वासी पीसन मोहम्मद परियल चांडियो जो तशद थियल लाश मिलियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त संगावती तकरार सां बिरादरी जे माण्हुनि तशद करे पीसन खे क़तलु कयो आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहनि, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383569
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212020।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream. By Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदला समी समातन के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुली धो के समंद है, चाहतों की बारिश उलासवल खजानों के साथ, दुआ ही पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जगते जमीन से आसमां तक, जिंदगी से मौत, सांस से तार दम से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरंड, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल स्मार्ट प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, आप लोगों के चेहरे को चमकाते हैं और आप लोगों को बहुत से भी बहुत ज्यादा वाला हसीन बना देते हैं। तो चाहे आपकी स्किन किसी भी टोन की हो, चाहे आप मर्द हो, खवातीन हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब तो भाई जान ऐसा वाला सीन हो चुका है कि आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, तो बिल्कुल जी आपको मिल जाएगा। तो जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, बस खूबसूरती की बातें होंगी आप लोगों के साथ साथ और मोहब्बतों की बातें की जाएंगी। तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत रहता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताई जाती है और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वाला एंटरटेनमेंट का डोज भी होता है। आप लोगों के साथ मजे करते हैं जी फन के साथ साथ, और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रोविजन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है और इसी के साथ साथ जरा आप अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारे साथ रहने वाला है। ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहेंगे और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ जाहिर सी बातें जिक्र करने वाले हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान, जो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। और इसी के साथ साथ हमारी लिस्ट में मौजूद है जी आज प्रोग्राम का पहला कलाम। प्रोग्राम का पहला कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: really bahut hi pyara sa yahan par kalam aap sun rahe hain, enjoy kar rahe hain, saath saath program sun rahe hain White Asian Tea Skin Beauty Show. बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ है और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग. तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम कहा जाता है. और आज के प्रोग्राम की जरा टॉपिक की जाने बातें हैं. तो आज का जो मेरा टॉपिक आप लोगों से होने वाला है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो ऐसे क्योंकि ये सीन जो मैं सोच रही हूँ ये कभी ना कभी तो हमारी जिंदगी में लाजमी हुआ होगा. मेरे साथ बहुत मरतबा हो चुका है लेकिन आप जरा आज अपनी बताएंगे कि आपके साथ हुआ या नहीं हुआ. तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो बिल्कुल ये होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे क्या कभी आप लोगों ने ऐसा है कि अपने घर एंटर होते वक्त हीरो वाली एंट्री मारी हो, हीरोइन वाली एंट्री मारी हो, आपको ये लगता हो कि भाई मैंने तो बड़ी अच्छी वाली एंट्री मारी है लेकिन ऐसे साथ ही सामने आपके जो है ना आपके घर में मेहमान बैठे और आप जरा शकी थी आयो तमाम अक्सर ही थींदो आहे जॾहिं घर में एंट्री मारी ना आयो ऐं असांखे लॻंदो आहे त असां दिलि में सोचींदा त असां हीरो वारी एंट्री मारी आहे पर सामने जॾहिं असां ॾिसंदा आहियूं त महिमान वेठा हूंदा आहिनि ऐं पोइ असां थोरो लॾी थींदा आहियूं. इहे कई मरतबा मूंसां त थी चुको आहे. तव्हां अॼु मूंखे ॿुधायो त तव्हां सां ईअं थियो आहे या सिर्फ़ु मूंसां ईअं थियो आहे. पर मूंखे लॻंदो आहे त जेके जेके चीज़ूं मूंसां थियूं आहिनि उहे चीज़ूं तव्हां सां बि लाज़मी थियूं आहिनि. सो मूंखे ॿुधाईंदा अगरि तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया पहिली मरतबा रोज़ाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुके चुके सुने वाले लिसनर्स जनाब क्या करेंगे अपना सेल फोन उठाएंगे मोबाइल का राइट ऑप्शन में जाएंगे देंगे अपना नाम लिखेंगे पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर. तो जल्दी कीजिए जी मैसेज भेजिए. उसके साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है और जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है. पेज को आपने क्या करना है, पेज को आपने फॉलो कर लेना है, पेज को आपने जैसे ही ऑन करना है ओपन करेंगे तो आप लोगों को हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. जब भी आप पोस्ट को जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ना उतना ज्यादा मजा आता है और उतने ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाती है. तो जितना ज्यादा हो सके हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए. दोस्तों को भी मेंशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए. और साथ साथ आप मुझे बताइए कि क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप तेश में आ चुके हैं, घर आए हैं, आपने हीरो वाली एंट्री मारी है, दरवाजा खोला है और आपके सामने मेहमान बैठे हैं और आप थोड़ा एम्बेरस फील कर चुके हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया तो मुझे बताइए जल्दी से कि ये क्या आपके साथ भी हुआ है कभी. हुआ तो होगा मुझे ये लग रहा है. तो जल्दी से बताइए जी प्रोग्राम कैसा बनते जाइए और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट. अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और उसके लिए आप डायल करेंगे 03157990595. तो 03157990595 ये नंबर आप डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते जाइए. जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरती को बढ़ाते जाइए क्योंकि खूबसूरत होना और हसीन दिखना ये आप डिजर्व करते हैं. ओके जो असां गॾु गॾु तव्हांजा मैसेज आहिनि. आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम. ठीक आहे बताई आदिल, आप कैसे हैं? लिखते हैं कि पंहिंजे ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं खामोशी सां ॿुधो, जवाब ॾियण वक़्त ते छॾे ॾियो. वक़्त हिकु बहितरीन इंतकाम जो नालो आहे. बिल्कुलु जी इहा हक़ीक़त आहे. नज़ीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से. भाईजान आपको वेलकम करते हैं. और रमेश कुमार कोहली हमारे साथ हैं थर पार कर से. भाई जान हमें सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं. और आदिल कहते हैं कि हर तवज्जा देने वाला शख्स इग्नोर करने में माहिर होता है. कोशिश करें जब कोई आपको तवज्जा दे तो उसे हजम करें, वरना अगर नौबत इग्नोर करने की आए तो आपको अपनी मौजूदगी पर भी शक होने लगेगा. याद है हकीकत बिल्कुल. और हिदायतुल्लाह अहमद आनी लगते हैं, सलाम कैसी हो सिद्रा, आज शादी है और पता नहीं अच्छा अभी तक ये ड्रामा चल रहा है मुझे लगा खत्म हो गया होगा. चलें जी आप इंजॉय कीजिएगा शादी. और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, आपने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी और हीरो के बजाय वो जो ना दूसरे लड़के को मिल गई थी और हमने बेचारे हीरो के नाम जो ना वो गाना डेडिकेट कर दिया था कि हीरो भाई की शादी हो रही है. आज पता नहीं किसकी किसके साथ शादी होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ हम गाना चला देंगे, रेंडमली गाना लगाएंगे, वो बस किसी को भी डेडिकेट जाएगा. और अली अकबर बरोई भाई हमें सुन रहे हैं, सकरण से आपका भी वेलकम एंड खुश आमदीद कर देते हैं. अयास अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं। अयाज अली खास के लिए भाई आपको भी वेलकम करते हैं और मोहम्मद जमान आ चुके हैं। मोहम्मद जमान भाई जान वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और उसके अलावा हैं जी दर्दे दिल हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मेरी प्यारी। और ऐसे ही आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, ज्वाइन करते जाइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताएंगे क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि आपने घर आते हुए हीरो और हीरोइन वाली एंट्री मारी है, लेकिन आपको पता तब चला जब घर में सामने मेहमान बैठे हुए और आप थोड़ा सा एम्बैरस हो गए। मुझे बताइए जल्दी से, और इसी के साथ टाइम हो जाता है, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाए, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-500-69-3-double-0-double-3-8-double-5-6-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

तारक लगा रहे हो, कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, क्या चल रहा है बताइए ना। इतनी ज्यादा ऐसी बातें जो है ना वो छुपाया नहीं करते, छुपानी नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03 1579 0595।

अच्छा जी, तो आने वाले लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है, और उसके अलावा आप फेसबुक वाले लोग जो है ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। मैंने आज आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप घर में आए, एंट्री मारी भाई हीरो हीरोइन वाली, और आपने सामने देखा तो मेहमान बैठे थे और आप उन्हें देखकर थोड़ा सा एम्बेरस फील कर चुके हैं। ये सीन क्या आपके साथ हुआ है या नहीं, ये मुझे आज आप बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आप ये भी मुझे बता रहे हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जरा आप लोगों के साथ खुलासा करते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो यकीन माने मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि इतने शानदार और इतने जबरदस्त क्वालिटी के और इतना अच्छा यानी कि उन्होंने सोचा है कि हर तरह के लोगों के लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए, चाहे आप साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, एक्नी क्रीम लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, नाइट क्रीम लगाते हैं, जो भी चीज लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, वो सारी चीजें भाई इन्होंने ऐड कर दी है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सबसे पहले जी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम मिल रही है, और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम और व्हाइटिश लवली क्रीम, इन दोनों क्रीमों में फर्क यानी कि आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है, यानी कि इसे रात के टाइम लगाया जाता है। और नाइट क्रीमें जो होती है ना वो ऐसा होता है कि भाई आप लोगों की स्किन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप लोगों के चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं, दाने आ चुके हैं, रिंकल्स आ चुके हैं, फेयरनेस जो है ना वो कहीं गायब हो चुकी है, स्किन थकी थकी सी लग रही है, मुरझाई सी लग रही है, ग्लो कहीं गायब हो चुका है, तो आपको नाइट क्रीम की जरूरत होती है। तो इस सूरत हाल में आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि फुल नेचुरल अजा से तैयार की गई है, इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन को फ्रेश बनाती है, फेयर बनाती है, और आपके चेहरे के पर जितने भी ये मसाले वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि व्हाइट एज लवली क्रीम का क्या काम है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम उन लोगों के लिए है जैसे आप नाइट क्रीम सिर्फ 18 साल के बाद लगाने वाले लोग होते हैं, 18 साल से कम वाले लोग नहीं लगा पाते हैं। वो ऐसा कि 18 साल से कम वाली जो स्किन होती है ना वो थोड़ी सी बेबी टाइप स्किन होती है, तो उसके ऊपर आप जो ना फेयरनेस क्रीमें लगाया करें, उसके ऊपर आप नाइट क्रीमें नहीं लगाया करें। तो अगर आप ये है, अदर बाकी जो लोग हैं जो लोग 18 साल से बड़े हो चुके हैं, 18 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो वो नाइट क्रीम लगा सकते हैं। बाकी अगर आपकी उम्र जो है वो छोटी है और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ग्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपकी उम्र 18 साल से कम है तभी आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये हर उम्र का इंसान लगा सकता है, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर हैं, जिस भी उम्र में आप हैं, तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए, क्योंकि एक फेयरनेस क्रीम जो होती है ना ये आप लोगों की स्किन के लिए बड़ी जरूरी होती है, आप लोगों की जिंदगी को जो है ना वो अच्छा अच्छा महसूस करती है, क्योंकि जब आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहती है तब आपको महसूस होता है कि वाकई भाई आप लोगों की स्किन को फेयरनेस क्रीम की जरूरत है। तो अगर गर्मी का मौसम है, आप मेकअप नहीं लगा पाते हैं, मेकअप को जरा रिप्लेस करना चाहते हैं किसी अच्छे वाले प्रोडक्ट के साथ, तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद होनी चाहिए, जब ही तो बात बनेगी। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जनाब रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन्स का फार्मूला है, 30 वाइटामिन्स के कैप्सूल इसके अंदर एड किए गए हैं, जैसे कि वाइटामिन डी है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन B3 है, और इसके साथ साथ इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। तो सनस्क्रीन जो होती है ना ये आप लोगों की स्किन को धूप से बचाती है, जो धूप के ऐसे खतरनाक से असरात आपके चेहरे पर आते हैं उन चीजों से बचाती है। तो एक ही चीज के अंदर, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो मेरी जान आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मजे की बात बताऊं कि व्हाइटिश लवली क्रीम तो भाई मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूं, मेरे घर में इसके सारे लोग फैन बन चुके हैं, कि आप भी इस्तेमाल करें, आपको भी पता चल जाएगा कि वाकई कितनी अच्छी फेयरनेस क्रीम मार्केट में आ चुकी है, और आपको भी अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई काम करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करके उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। आप इससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत भी होती रहेगी, ग्लो भी मिलता रहेगा, और आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहेगी धूप से, और उसके अलावा आप लोगों को मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसके ऊपर मैं अगर बैठूं तो मैं पूरा प्रोग्राम जो है ना वो इसके ऊपर कर सकती हूं, लेकिन ऐसा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लिए इतनी सी तारीफ जो है ना वो काफी है। वैसे तारीफ भी उन चीज
چیزوں کی جاتی ہے واقعی جو تعریف کے قابل ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکنی سے سفر کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایکنی آپ کے چہرے پر ہے, تو آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب بھی موجود ہے. اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو ہے نا, یہ وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں. دانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے, جسے آپ اپنے کریم کے اندر بھی ایڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اکیلا استعمال کرنا چاہتے تو اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن استعمال کرنے سے پہلے جو ہے نا, یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ خیال رکھا کریں. وہ یہ کہ آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہوتا ہے, جو کہ وائٹش بیوٹی سوپ سے کریں گے یا پھر وائٹش فیس واش سے کریں گے, جو کہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے. بالکل نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہونے والے پروڈکٹ ہیں. آپ بس استعمال کیجیے دل کھول کر اور اپنی خوبصورتی کو بڑھتا ہوا دیکھیے, کیونکہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت رہے اور آپ ہمیشہ گلو کرتے رہیں. تو گلو کرتے رہیں, خوبصورت رہیں اور خوش رہیں. اسی کے ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا, میں آپ لوگوں کو گانے بھی سناؤں گی. بالکل سی گانے ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو ہم گانے سنیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ ڈائل کرتے جا رہے ہیں 03-15-799-0595. میں دیکھ رہی تھی نمبر, میں نے کہیں غلط تو نہیں بتایا, صحیح بتایا. تو 03-15-799-0595 ڈال کیجیے, اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور انہیں بتائیے کہ آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹش بیوٹی پروڈکٹس, جس میں وائٹش بیوٹی کریم ہے, وائٹش لولی کریم ہے, وائٹش سوپ ہو, وائٹش فیس واش, یا پھر وائٹش کی ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب. یہ تمام پروڈکٹس آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں, مناسب سی قیمتوں میں آپ کو مل رہے ہیں, تو فائدہ

तव्हांजी दिलि जेका आहे उहा स्लिप थी वई आहे, छो त माण्हू सोनो ॾिसी जेको आहे न वरितो अथई. अगरि तव्हां बि सोना माण्हू ॾिसण चाहियो था या अगरि तव्हां पाण सोना माण्हू थियण चाहियो था, त तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो. इहा त हक़ीक़त आहे, जॾहिं तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा, पोइ तव्हां सोना सोणा थी वेंदा. ऐं तव्हांजा मैसेजिस आहिनि बिल्कुलु फेसबुक वारा माण्हू पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो, ख़बर पवे रश लॻी पई आहे. हाँ बस दादा थोड़ा सा याद लाया करे. बाकी सब खैर है. और ये स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है. हाय हेलो, कंबर सिटी से आप हमें सुन रहे हैं. शो इज वेरी नाइस. गानो चाहियो आ तव्हां हलाइण जी कोशिश कंदा सी. उनखां अलावा आदिल कहते हैं कि सार सिद्रा आज ये लास्ट में गाना लगाइएगा. बिल्कुल जी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे. एसन कहते ओ हेलो माई फेवरेट आर जे, छा हाला उम्मीद त खुश हूंदो, शाद हूंदो, आबाद हूंदो, न याद हूंदो, न ई विसरंदो. ये सफ़र. अच्छा नजीबुल्ला बिरोही हमारे साथ हैं. हेलो नूरिसन तुनियो भाई हमें सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू, द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, हम हमेशा सलामत रखे. अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा थोड़ा मैसेज डिफरेंट होगा, लेकिन ये सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. अच्छा लुबी हमारे साथ है. लुबना क्या कहती है, अस्सलाम वालेकुम सिडू जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ. वेलकम वेलकम मेरी प्यारी परी, आपको वेलकम कहते हैं. और किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय अदा स्मार्ट हाजिर आवाज कमेंट लिस्ट में ॾाढो भलो कयो वाला. मां सोचा पंहिंजो कोन ईंदा शायदि तव्हां. अच्छा नूरे सिंह तुनियो भाई बिल्कुलु तव्हांजो गानो हलाइण जी कोशिश कयूं था, तव्हां पंहिंजी सीट ते वेही रहो. अच्छा हिदायतुल्ला कहते चांद से तो नहीं, लेकिन सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में चेहरे का नूर चुरा लेगा. जब भी तो कह रही हूँ व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाए, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड है, जो कि आप लोगों को सूरज के इन खतरनाक असरात से बचाती है. तो आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है. और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक एक दफो, तो जी भाभी जो सहेलियों आयू, मुझे खबर हुई कोन, आऊं गानो गाइंदो हथ हेडा होडा कंदो आयस, सामू वेठियू हुयूं, पोइ बस न बुझो. बिल्कुल ईअं थींदो आहे.

इहा वैसे हकीकत आहे। हिकिड़ी ॾाढो वीआईपी गानो आहे, वैसे मूं पर्सनली ॿुधो त मूंखे इलाही सुठो लॻो गानो, ऐं बिल्कुलु गानो जी तव्हांजो हिट वेंदो छो त गानो पाण ई ॿुधाए थो बाबा मां हिट आहियां।

ब्रेक जी तरफ हलूं था उन खां पोइ असां न्यूज़ ब्रेक जी तरफ हलूं था उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे तव्हां जी असांजी जेका हीअ कचहरी आहे पूरी पूरी टे बजे ताईं कंटिन्यू रहंदी। सो तव्हां गॾु मौजूदु रहिजो, कारी नमन जो हिते वेठा हुजो, ॿुधंदड़ प्रोग्राम मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इन की प्लेस ने प्रोग्राम वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अदा छा गाला डाडो परेशान पे लगी
2: भाऊ छा कया बिन सालन खा अमर
1: मायूस न थी अज मां तोखे अल्लाह वारन इंसानन जो दस थो जा जिन

सिंधा कोर्ट सख बेंच सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चटाभेट इम्तिहान के नतीजन खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते स्टे ऑर्डर जारी कर छोड़ो। कमीशन के चेयरमैन सेक्रेटरी कंट्रोलर ए लगभग धुरन का जवाब तलब बरुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अदनान अल करीम मेमन जस्टिस अब्दुल हामिद बुरगड़ी केस की बुधनी कई।

कराची प्रेस क्लब आॾो सिंध पेंशनर्स ग्रैंड अलायंस ऐं ग्रेवा सिंध तरफ़ां मुतालबनि जी मञता जे लाइ एहतजाज। ग्रुप इंश्योरेंस पेंशन ऐं पघारनि में हिक जेतिरी वाधि करण जो मुतालबो। नवाबशाह में अबका जे सर ते सरकारी मुलाज़मनि जो एहतजाज। बजट में सरकारी मुलाज़मनि जे पघारनि में 100% वाधि करण जो मुतालबो। ॾहनि के भरिसां रेलवे ट्रेक तां औरत ऐं ॿार जो लाश हथे सुञाणप न थी सघी। पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल करे जांच शुरू करे छॾी। रेलवे पुलिस चयो आहे त लाश माउ ऐं संदसि ॿार जा थी सघनि था, जेके राति जो देर सां ट्रेन मां किरी फोत थिया आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।

बिरपुर बुलडो भरसा गोठ मोहम्मद सिद्दीक आराई में पसंदी शादी कंदड़ जोड़े वाले केस जी सिंधा कोर्ट सर्किट बेंच लारकाणा में बुधणी अदालत लारी जे भाव जी दरख्वास्त रद्द करे मोहम्मद हसन बुलडो ए सिद्रा चनो जी शादी के जायज ए कानूनी करार दे छड़ियो। अदालत धुरिन जा दलील बुधण बाद फैसलो जारी किया।

चेठा जा मिया थे पारा घर सदे कतल कर नौजवान के वारसन जो मेहरान हाईवे से लाश रखी धरणो मकतूल अली ढींगो के वारसन जवाबदार गिरफ्तार करने मुतालबो कर। थुल में बारह ढी अगू चौकीदार के कतल कदेरे के पुट बिलावर सरकी के पुलिस गिरफ्तार करण में नाकाम। पुलिस मकतूल बोरत के कतल केस में नामजद जवाबदार बिलावर सरकी की गिरफ्तारी के लिए कख भी बीड़ो न कर। बिलावर सरकी के वारसन राजूणी जो कोशिशों तेज कर छद मकतूल परत कुटुंब से दबाव वधी वो। कराची के इलाके गुलिसान जोहर में पुलिस की कार्रवाई वंशियात फरोश औरत शीरीन उर्फ शरीना गिरफ्तार। वंशियात फरोश शीरीन उर्फ शरीना के बिन पुटन समेत कामराज चोन के वटा गिरफ्तार किया। पुलिस शीरीन उर्फ शरीना घर की दरिया में सीधी रीत मंशियात विक्रो कंदी हुई।

0: मेहर जे दुआ चौक में दुकान में सिलेंडर धमाको, मुलाज़िम नींगर अब्दुल नबी जतोई सड़ी जख्मी, माण्हुनि में भाज, दुकान मालिक दुकान बंद करे फरार थी वियो। मेहर जे विच शहर में एलपीजी जा दुकान खुलियल, शिकायतुनि बावजूद इंतज़ामिया नोटिस न वरितो। शहरनि पारां शहर मां एलपीजी जा दुकान ॿाहिरि मुंतकिल करण जो मुतालबो। 88 मोरी भरसां सेठार की शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज, शाख जे पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। आबादगारनि चयो त 10 सालनि खां सेठार की शाख जे पुछड़ीअ ताईं पाणी नाहे पहुतो। आपश अमलदार बासरनि खे पैसनि ते पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाए फसल बचाया वञनि। ऐं सिंध में सख़्त गर्मी जी लहर बरकरार, सिज बाहि उगाछण लॻो। बिजली जी बंदिश बि शहरनि जा अंज वधाए छॾिया। मुख़्तलिफ़ शहरनि में गरम हवाऊं घुलण सबब शहरी घरनि ताईं महदूद थी विया। बिजली जी जारी डिघी लोड शेडिंग ख़तम करण जो मुतालबो। शहरनि चयो आहे त सख़्त गर्मीअ दौरान बिजली जी डिघी बंदिश सबब परेशान आहियूं।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स्ड गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप। 1.5, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी। होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहन, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ
7: 93 93 85 69।
8: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर, FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा तो जो है ना आप हमेशा उन चीजों की तरफ आया करें जो लाइट वेटेड हो ऑल स्किन टाइप के लिए हो नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट हो और लड़के लड़कियां सारे लगाएं ठीक है तो आप भी ट्राई करके देखिएगा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले बताया अभी मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां खे मिले थो जनाब डी स्किन जो फेस वॉश ऐं फेस वॉश जेके माण्हू लॻाइण चाहिनि था उहो बिल्कुल जी डी स्किन जो फेस वॉश तव्हां लॻाए सघो था जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार कयो वियो आहे हिन जो मतिलब इहो हूंदो आहे त हिन जे अंदरि अहिड़ियूं प्रॉपर्टीज़ हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे अंदरि वञी करे तव्हांजी स्किन खे वधाईंदियूं आहिनि तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदियूं आहिनि तव्हांजी स्किन खे सफ़ा हीअं प्यारो प्यारो चिकनो चिकनो मखण मखण बणाए छॾींदियूं आहिनि सो अगरि तव्हां बि पंहिंजी स्किन खां निशान आहियो तव्हांजे चेहरे ते एक्नी आहिनि निशानात आहिनि डार्क सर्कल आहिनि पोर्ट्स आहिनि तव्हांजे जेके ओपन आहिनि ओपन पोर्ट्स जेके हूंदा आहिनि उनजी वजह सां बि तव्हांजी स्किन ते काफ़ी मसला अची वेंदा आहिनि सो उन्हनि खे बि अगरि तव्हां बंदि करणु चाहियो था त पोइ तव्हां जेको आहे न बिल्कुलु इस्तेमालु कयो जी स्किन जो फेस वॉश ऐं जी स्किन फेस वॉश त बिल्कुलु तव्हां लॻाईंदा ॾींहं में तव्हां हिकु दफ़ो लॻायो ॿ दफ़ा लॻायो टे दफ़ा लॻायो तव्हांजो फेस वॉश तव्हांजो मुंहुं तव्हांजी मर्ज़ी पर इन खां वधीक न लॻाइजो ठीकु आहे यानी कि चार पंज छह सत अठ दफ़ा न लॻाइजो सिर्फ़ु टे या चार दफ़ा तव्हां लॻाए सघो था उन खां अलावा पोइ जॾहिं तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कयो था चङे तरीक़े सां पंहिंजे फेस खे क्लीन कयो था पोइ राति जे टाइम ते तव्हांजी स्किन ब्यूटी क्रीम खे पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो ठीकु आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हांजे चहिरे ते जॾहिं तव्हां अप्लाई कंदा त तव्हांखे महसूसु थींदो की एॾी ज़बरदस्त क्रीम अथव लाइ हिन जो टेक्स्चर एॾो ज़बरदस्त आहे एॾी मतिलबु मस्तु तरीक़े सां हिन खे ठाहियो वियो आहे डॉक्टर्स खां पुछा करे डॉक्टर्स खां अप्रूवल वठी करे पोइ हिन क्रीम खे तव्हां ताईं पहुचायो वियो आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटामिन ई बीड्स आहिनि माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन सां तयारु कई वई आहे सिर्फ़ु ॿ रातूं इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ज़बरदस्त जेको आहे न निखार मिली वेंदो सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं उन खां अलावा मायूं मर्द सभी हणी सघनि था ठीकु आहे सो तव्हां सभु लॻायो ऐं तव्हांजे एरिया में नाहे अवेलेबल जिते तव्हां रहो था ॻोठ आहे सिटी आहे अगरि अवेलेबल नाहिनि त पोइ तव्हां डायल कयो पिया 03 15 799 0595

ओके जी, सो तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, तव्हां सां कचहरियूं हलनि पियूं, तव्हांजा मैसेजिस आहिनि, तव्हांजे लाइ गाना हलायूं पिया. ऐं हा, ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि बि यादि अची वई, तव्हांखे ख़ूबसूरती जा राज़ बि ॿुधायूं पिया. सो ख़ूबसूरती जा राज़ त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं न, जेके माण्हू जंहिंसां मतिलबु प्यार कंदो आहे, जंहिंखे सुहिणो सुहिणो ॾिसणु चाहींदो आहे, त उन्हनि खे ॿुधाईंदो आहे न त बिल्कुलु तव्हां असांखे प्यारा आहियो बाबा, ऐं असां चाहियूं था त तव्हां सभु सुहिणा सुहिणा ॾेखारियो, तव्हां सभु इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो, जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती बि वधंदी रहे ऐं तव्हां सुहिणा सुहिणा थींदा रहो. उन सां गॾोगॾु हिते गानो लिस्ट में मौजूदु आहे, त मां सोचां पई त तव्हांजे लाइ गानो हलायूं. ऐं गानो आहे तोखां पैसा न प्यार कबा. ये सिर्फ एक मर्द ही कह सकता है, औरत जी वस जी गाल नहीं. जी हाँ, बिल्कुल गाना सुनते ही मुमताज़ मलिक की आवाज में.

अच्छा दुनिया में जिंदगी में हिकड़ी गाल तो मुझे समझ में चाहिए मर्द जी को हुआ ना मर्द जात जिका है मतलब मर्द के समझण जो ना डाडो सोलो है आई कई मर्तबा ये थिनो है मर्द के समझी भी मानो ना आए सके तो मर्द जो मुखे लगनो है सब खा वधिक अगर के कमायो है तो वो मर्द है जो सब खा वधिक कमाइंदो है सब खा वधिक जो है कमाइण वारो मानू पान ते सफा थोड़ो खर्च कंदो है सो तमा जे के मर्द रात मुखे बुधो पया अगर तमा बिल्कुल तमा कमाइंदा हो कमायो पया तो थोड़ो पांजे भी मतलब सिर ते खर्च कंदा कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो डी स्किन फेस वॉश वठो आई सोना सोना थियो समझो दा पांजो भी ख्याल रखो बाबा न तो बदले में ताकि यो जरूर बुझण मिलंदो त ता सा लाय कयो छाय सो ता पांज लाय भी कयो बेशक पांज फैमिली जे लाय भी कयो त मर्द जे को नो डाडो सैक्रिफाइस कंदो बाबा सो मर्द जी कदर कंदा कयो

ओके जी, इकबाल लाशारी हमारे साथ है विलेज सोनो खान लाशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजे सिदरा नाए शो आए तमाम जो मोहब्बत हूँ प्यारा भा इमरानी आवाज हमारे साथ है कहते आपका शो ग्रेट है। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि हर एक शख्स को कहना पड़ा कि खुश हैं बहुत है। उजड़ के हुरमते दिल को बचाए फिरते हैं बचने की बुझने थोड़ो के मुखे पेरा पढ़ो बोलो समझा का थोड़ी गाल पर या अनवर बात आज मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया और किशोर भाई कहते हैं कि आप मुझे भी एक डी स्किन का खोखा दे दें फिर मैं उस पर बैठकर पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ। सच्ची में कर सकते हैं। यह गाल तां खा वते के समझी सके तो सही कम सिर्फ सिदरा जो तवां चई अल्फाज़ आहिनि इहे शायदि कुझु ॾींहं कुझु साल पहिरियां तव्हां चयो हुयो और इहे जी स्मार्टू गोपां क्या कहते हैं हाँ बाबा गानो वाकई भलो हुयो और हैं जी आदिल कहते हैं सिदरा आप नन्ना बाबा असां जा दिल एॾो हल्को कोने को वासा भाई हमारे साथ मौजूद हेलो वासा भाई दर्द दिल क्या कहती है हुस्न चेहरे का मोहताज नहीं होता असल खूबसूरती तो अंदाज में होती है जो निगाहों में वकार रखे वही दिलों पर राज करते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह सही वाह। अच्छा किशोर भाई कहते हैं असा पान सोना आयो छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइंदा आयो या कई न कम जी गाल। अनवर भाई कहते व्हाइट एश यूज करो सोना थी वेंदासी यूज करे सोना थी वेंदासी तो पोए काड़े वेंदासी ता पांजे पांजे घर हुंदा बाबा काड़े ता छो था काड़े वनन चायो बेटा और पांजे घर सुकून सा कम कार कयो खाओ पियो ऐश कयो।

अच्छा अंदाज़ो ईअं लॻाए छो त तव्हां पहिरियां अचो पिया न, मूंखे लॻो त अॼु थोरी देरि थी वई आहे मतां तव्हां न अचो। और याकूब मंगी भाई हमारे साथ मौजूदु आहे। याकूब मंगी, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा प्रोग्राम ॿुधो पिया। और नजीबुल्ला बिरोही भाई, तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि। और हिन जी हिदायत

0: अच्छा हिता तो लाइए बाबा तवां जो मोहब्बत हुआ इन तवां ये समझन आयो
1: कोरिया तो सुन लता तो खा पैसा न प्यार कबा
0: हाणे पैसा तव्हां प्यारा न कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो डी स्किन फेस वॉश वठी अचो जीअं तव्हां सोणा सोणा थी वञो उन खां अलावा वास भाई खे अधी सिधो जवाबु हिकु दफ़ो मां अचां पियो तेज़ कलाम चवंदो जेको अच्छा कलाम चवंदो अदी कमरे में पहुतस ॾिठा महिमान वेठा हुआ अदी पोइ मां वरी पाण खे ॿिए कमरे में अच्छा कमरे वठी विया अदी जेतिरे ताईं महिमान वेठा हुआ ओतिरे ताईं मां बंदि हुअसि कमरे में ऐसी बि कोई बात नही थी वियसि कि आप ख़ुदि को बंदि ई करे और ये मतलब हा ये एक ऐसा सीन है जो मुझे लगता है कि सबके साथ हो चुका होता है और जो चीज हो चुकी उसके बाद हमें पता नहीं क्यों शर्म क्यों आती है ये बात भी है।

वासाई वाह वासाई वाह इहो अथव साईं कमाल जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण वारा माण्हू ईअं ई साईं बाह लोॾे पिया घुमनि तव्हां बि लॻायो तव्हां बि सुहिणा थियो तव्हां बि बाह लोॾे घुमो विलेज ये हमारे साथी जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं मेरी छोटी सी बेटी है जिसकी उम्र 15 महीने है मगर आपकी इतनी दीवानी है जो आपकी आवाज सुनकर घूमती है आपका शो अच्छा यदि आपकी आवाज में वाह क्या जादू है उसका नाम सुहाना है लेकिन हम उसको प्यार से बाजी सिद्रा कहते हैं तो वो बहुत खुश होती है मुजफ्फर मुदस्सर एंड मुबशिर सोलंगी भी आपके साथ मौजूद है क्या बातें थी यहाँ बड़े बच्चे बूढ़े सब भाई मुझे शौक से सुन रहे हैं थैंक यू जी थैंक यू अल्लाह साईं जा करम है चंदन अल्लाह साईं जिनके चाहे इज्जत ॾे जिनके चाहे ज़िलत ॾे इहो सभु त हुन जो कमाल आहे इंसान जी औकात कोने का अल्ताफ हुसैन राहे जो हमारे साथ ही नवाब शाह से कहते सिद्रा बाजी आप कैसी हैं शो आपका बहुत ही बेस्ट होता है शमन का गाना लगाएगा बलोची सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट मुख्तियार राहे जो ओके भाव वाह डेरी सऊद डेरी फ्रॉम नवाब शाह सलामती शो तुम्हारा नाइस है मोहबतू प्यारा भा और ये कश्यप है कहती हाय सिद्रा गुड आफ्टरनून हाउ आर यू मां सफा ठीक तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो गानो चयो आहे कशफड़ी बिल्कुलु कशफड़ी तव्हांजे लाइ गानो हलाईंदासीं तव्हां पंहिंजे सीट ते वेही रहो बाबा काॾे बि न चुटजा

बशीर लिगारी हैं गोठ मीर खान लिगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर कीअं आहियो अमां जो प्रोग्राम लाजवाब आहे रोज बुधंदा आहियूं असां खे फोटो सरदारी जो को कलाम द बुधरायो भा बिल्कुल कल हिकड़े भा असां खे फोटो सरदारी जे गाने जी फरमाइश कई हुई ऐं मूं सर्च कयो गाना मतलब फोटो सरदारी जा ॿुधा त मूंखे मतलब जेको उन्हनि जा शायद सॉन्ग समझ में न आया तव्हां ख़बर आहे असां जेंज़ी माण्हू अहिड़ो कलाम जेके असांखे थोरो समझ में न ईंदा आहिनि सो मां कोशिश कयां थी कोई मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में हलाइण जहिड़ो गानो मिली वियो त असां लाज़मी हलाईंदासीं ठीकु आहे मोहबतूं आहिनि तव्हां ॿारनि जो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो शौक़ सां और बाजी ही वारो गानो त हलाईंदा तोखां पैसा न प्यारा कबा मुमताज़ मलाई जी आवाज़ में इमरान अली बिरोई भाउ सां गॾु मौजूदु आहिनि बिल्कुलु भाउ तव्हां पंहिंजो गानो ॿुधो हूंदो मीरपुर ख़ासि अब्दुला महर केते शुए महर बि मेरे साथ ही अस्सलाम वालेकुम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है बाजी टॉपिक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अच्छा विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं वेलकम करते हैं भाई को और हेन जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके आप ही सिद्रा आई एम फादिल लाशारी आज सॉन्ग सुनाइएगा मुझे ठीक है डेडिकेशन आपने सेंड करी है जी प्रिंस मौसल लाशारी इम्तियाज हुसैन लाशारी इरम दर्दे दिल लेला परी नूर फातिमा अनमोल आयजा यसर प्रिया कुंज

बिल्कुल जी, मां लोड़े पयो घुम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो, डी स्किन फेस वॉश भी लगाए, न मिले थो त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595, डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते, अवेलेबल करायो ऐं वञी वठी अचो, ठीकु आहे, मां लोड़े वञी वठी अचो। सो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, वापसी जल्दी तव्हांजी मोटींदासीं, तव्हां गाॾी न वञिजो, ओ हिते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लॻाईंदा रहो, सोणा थींदा रहो।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग, इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप, वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु, वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

गई थी बहुत ज्यादा गर्मी के हिसाब से, ये गाना मुझे परफेक्ट वाला मिल गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के समाधों के नजर करते हैं. और साथ साथ यहाँ पर अगर आप भी चाहते हैं कि भाई गर्मियों के हिसाब से कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए जो आप लगाएं तो आप लोगों की खूबसूरती भी बरकरार रहे और आपकी स्किन जो है वो खराब भी ना हो. क्योंकि कई मरतबा ऐसा सीन हो जाता है कि जब हम गर्मियों का सीजन आता है ना, स्टार्ट होता है, तो हम जब अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं पहले से जो लगा रहे होते हैं, तो गर्मियों में कुछ ऐसा ही रिएक्शन आ जाता है कि हमारी स्किन जो है ना वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर खराब हो ही जाती है. तो आप भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये गर्मियों में भी इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया है. सिर्फ दो रातें आप इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. अक्सर जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि बाजी गर्म प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद क्या ऐसा होगा कि जो रिजल्ट हमें मिले हैं वो हमेशा रहे, और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हम छोड़ देंगे तो रिजल्ट्स क्या खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे या दोबारा स्किन खराब हो जाएगी. तो ऐसा कोई सी नहीं होगा. जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, डी स्किन फेस वॉश लगा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी जब आप इस्तेमाल करेंगे. और इस्तेमाल करने के बाद ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे. तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम. ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा और इसके साथ साथ इस्तेमाल करने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा. और आप अगर अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं, कोई मजीद इनसे मालूम लेना चाहते हैं कि भाई कहाँ पर मिल रही है कहाँ पर नहीं मिल रही है, ये तमाम बातें अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप डायल करेंगे 03-15-799-0595. तो ये नंबर लास्ट में डायल कीजिए ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए.

अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं हलवा पूरी भी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है, वो कभी नहीं पूरी होगी भाई। और किशोर भाई लिखते हैं कि हमें ज्यादा मुंह ना लगाया करें जनाब, हम कमबख्त वफाओं पर उतर आते हैं। अल्लाह जायबुदा। और आदिल कहते हैं टॉपिक आंसर में जब भी घर आता हूँ मेहमान नहीं होते हैं। अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है। और अयाज अली खास के लिए मैं सुन रही हूँ वेलकम जी। ओगरी चाचा खालिद हमारे साथ कहते आई एम आउट ऑफ शो, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जी, जब आप फ्री हो जाएं तो आराम से तसली से प्रोग्राम में आ जाएं। और लोबी कहती हैं कि तेरी आंखों की सहूलत हो मयसर जिसको, फिर वो चांद सितारे कहाँ देखेगा। क्या बात है।

शमन मिराल की आवाज में बलोची गाना किसी ने फरमाइश कर दी थी और वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना का तमाशा जो प्रोग्राम बुध प्यासो मोहब्बतों प्यारे भाई। अनवर भाई कहते हैं स्लो कलाम सिद्रा का बर्दाश्त नहीं थी ना हकीकत। अच्छा गुल यासी नाज हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं जी रहे हैं। अच्छा पंजाब से सुन रहे हैं, वेलकम जी वेलकम। लोबी तमाम जी केड़ी फरमाइश बुधायो ओके जी नूर सिंह तुनियो भात हमासा के बदीन खां बुधो पया आई तमाम के सुन प्रोग्राम तली सियाल भाई भी हमें सुन रहे हैं वक्त भी बहुत शुक्रिया। और हैं जी ये रिजवान अली जागीरानी दुबई।

भाई मैं नहीं बोलूंगी मुबारक क्योंकि किस बात की मुबारक दे आप लगाएं जी स्किन ब्यूटी क्रीम तब बात कुछ और हो सकती है, तो लगाइए जी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्यों नहीं लगा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा होता है ना कि जब आप क्रीमें नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए जो है ना डी स्किन फेस वॉश मौजूद है, तो डी स्किन फेस वॉश आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप डी स्किन फेस वॉश इस्तेमाल करें तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये इतना जबरदस्त है, इसकी क्वालिटी इतनी मस्त है, और जनाब ये जो है ना तैयार किया गया उन तमाम चीजों को डाल कर जो चीजें आपकी स्किन को और ज्यादा हेल्दी बनाती हैं, ग्लोइंग बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हों या फिर जितने भी मसले हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी का जो फेस वॉश है ये इस्तेमाल करते हैं आपको इजिली कहीं से भी मिल सकता है। अगर आप सिटी में रहते हैं किसी भी सिटी में या फिर आप अपने गोठ में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाए और वहां से मालूम लें, अगर मिल रहे हैं तो बहुत बेहतरीन, नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 0315-799-0595। तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए अगर आप भी चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंटी स्किन फेस वॉश, तो नंबर डायल कीजिए और आप भी अवेलेबल कराइए। और हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ड आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, और कहती हैं टॉपिक नहीं डियर। फजीला हमारे साथ हैं, कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली सिस्टर्स को। ओके

जी बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना। एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जिसकी हमें फरमाइश हमारी कश्यप ने कर दी थी, तो हम कश्यप की फरमाइश का गाना भी सुनेंगे। और ये हमारे साथ ही जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी 8 हिंगोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा मुस्कान, हमें आबदा परवीन जी का ये वाला गाना सुनाइए। अच्छा बिल्कुल भा तव जी पसंद असा सुभाणी हलाइंदासी छो अज जो टाइम जो है प्रोग्राम जो खत्म थियण वारो आहे, लिस्ट तकरीबन फुल। और कहते हैं डेरी के जमादार खुदा बख्श सोलंगी, शमन सोलंगी, आसिफ एंड सलीम सोलंगी, ओके सब भाइयों को।

राजा सकलेन अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम करते हैं। इरम भी हमारे साथ है। इरम क्या कहती है, जवाब है नहीं नहीं नहीं, ओके जी ओके। और शहबाज कोसो भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं भाई को। अरीबा भी हमारा शो सुन रही है, अरीबा आपका भी बहुत शुक्रिया।

सुकून की तलाश में तो खैर हर कोई आए, पर खूबसूरती की तलाश में भी हर कोई आए। मुख्य लगन है तो अगर तुम भी खूबसूरती की तलाश में आयो तुम्हें कोई सुठो प्रोडक्ट नथो मिले तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ अची सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी तुम्हारी खूबसूरती की न सिर्फ बधाई बल्कि तुम्हारी खूबसूरती जो ख्याल भी रखे थी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सब का बेहतरीन गाल तुम्हें बुधाई हल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डॉक्टर्स का फुल तहकीक कर ही तैयार वो है प्रोडक्ट। डॉक्टर्स का मशवरा वी कर पहुंचाई वो है। अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहो था तो बिल्कुल बेफिक्र कर इस्तेमाल कर सकता छो तो अंदर कोई भी अड़ी चीज एड ना कई वही जी स्किन के नुकसान पहुंचाए बल्कि फायदो ही फायदो डी बाबा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम लगाओ जो माइक्रोबीड्स फॉर्मुलेशन से तैयार कई वही है। वाइटमिन ई बीड्स इन अंदर मौजूद है तुम्हारी ऑल स्किन टाइप जो लाया मर्द मायू सब लगाओ ठीक है सोना थी वनो हाजी बो कुछ न खे बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे डी स्किन फेस वॉश भी खे अकेले न लगाए ठीक है गड लगाओ बई चीजों।

0: शर्मा जी, बहुत ही प्यारा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। एक और लास्ट ट्रैक हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हम जरा सोचेंगे कि इस गाने को भी सुनते हैं जरा। और टाइम भी बड़ा तेजी से गुजरता जाए, आज के वैसे 2 घंटे मुझे ये लग रहा है कि बड़ी जल्दी गुजर गए। ऐसा आपको भी लग रहा है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? क्योंकि इतना प्रोग्राम इतना खूबसूरत है, व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, प्रोडक्ट इतने खूबसूरत है, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, लिसनर्स इतने प्यारे हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता कितना तेजी से गुजर जाता है। और इसके साथ साथ भाई जान आमिर खान महेश्वर हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई हेलो हो गया आपका भी, और वासा भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्ला आपका भी बहुत शुक्रिया, आदिल आपका भी बहुत शुक्रिया। और जी हमारे साथ मौजूद है मैं इरफान सियाल साहब, कहते मैम आर जी ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान हमें सुन रहे हैं, हेलो। अच्छा दर्द दिल भी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है। ओके सो आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए, इनसे कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं और कुछ भी पूछना चाहते हैं बेफिक्र होकर पूछिए। मैं इरफान सियाल साहब का ये कांटेक्ट नंबर है, इनसे राबता करके इनसे मालूमात ले सकते हैं जनाब, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, ये तमाम चीजें और बातें आप इन्हें बताइए, शेयर कीजिए, नंबर डायल कीजिए। और साथ साथ यहाँ पर आपका हमारा साथ जो है वो इतना ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी कल वाली प्रोग्राम में होने वाली, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है रोजाना, बस जुम्मा को छोड़कर।
1: दिल दे विच की तेरे मैं सुनिया ऊंचिया दीवारा
0: रख, सो वरी तमाम से मुलाकात मुझे सुभाने थी वारी है, सो पांजो लाही सारो ख्याल रखंदा, किते का गलती थी उजे को एडो लव्स गालायो जे को तमाम के सठो न लगो जे, तो ने चले माजरत मोकलानी ना है बाबू, सन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान लबनान ते हमला जारी रहने से अमेरिका सा गाल रोकने की धमकी दे छी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबा ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती बाबत सलाह बंद न कया तो संगीन नतीजा निकरंदा। किथे में मौजूद अमेरिकी फौज भी नतीजा भोगींदी। कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी चाहे तो लबनान ए गजा में इसराइली कार्रवाई मजामत से मजबूर कंदियों बाबुल मंदब में भी आबना हरमुज जड़ी सूरत हाल पैदा थी सके थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारा फोन से गाल दौरान नेतन्याहु ते सख्त कावड़ जो इजहार खेस नाशुक्रो चरियो करार दई छो। सदर ट्रंप चाहता आउं तुझी खल बचाए रो आं न तू करप्शन केस में जेल में हुई हाँ। ट्रंप की गाल दौरान नेतन्याहु रुगो ओके ओके चवन्द रो। कहते तनकीद करे या बुराई करे वोट वठण ना आयो असांजी पार्टी का सवाए कें गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत कई है तो बुधायो। 2018 में हुकूमत खत्म न कई वे हाँ तो गिलगित की किस्मत तब्दील कर छू हाँ। गिलगित में चूंड जलसे के खिताब कदे अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ चाहे तो गिलगित में हाइडल मनसूबो भी असा लगाया बया मनसूबा अजा तक मुकम्मल ना थिया। गिलगित एयरपोर्ट के वरों करण के लिए शहबाज शरीफ के चवंदुस वोट मिले या न जीबी में लोड शेडिंग कबूल ना या खत्म कई वे। वरी वजीर मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल यान युडोंग की मुलाकात वितरफ लागापन समेत मुख्तलिफ शोबों में सहकार के हथी देने से इतफाक। वरी वजीर पारा सिंध के जरई माहिरन की टीम के जल्द चीन मोकलने जो फैसलो। मुराद अली शाह चाहे तो जरई माहिरन के चीन मोकलने जो मकसद चीन का जरात बाबत सीखण है। चीन ए पाकिस्तान ज लगापा वक्त से गुड मजबूत थी रहा है। पाक चीन दोस्ती खिते के अमन की इब्तिज़ामिन है। नए माली साल की वफाकी बजट 5 जून बदला 8 या 12 जून से पेश करने का इम्कान। कौमी इक्तिसादी काउंसिल जो सुभाणे थियल इजलास भी मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी इजलास की नई तारीख जो ऐलान भी न थियो। ज़रियन भी चवण है वफाकी बजट 8 या 12 जून से पेश थी सके थी।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तरजीह आहे सनती तरक़ीअ जो मक़सदु अवाम जी भलाई ऐं बहितरी हुजणु घुर्जे। वज़ीर आज़म पारां वज़ारतुनि खे माहिरनि सां थी जारी मुशावरत यकीनी बणाइण जी हिदायत।

कराची प्रेस क्लब आदो सिंध पेंशनर्स ग्रैंड अलायंस ए ग्रेवा सिंध तरफा मुताल पंजी मंजता जे लाइ احتجاج ग्रुप इंश्योरेंस पेंशन पगारन में एक जतरी वादा करण जो मुतालबो नवाबशाह में वे एपका सर ते सरकारी मुलाजमन जो احتجاج बजट में सरकारी मुलाजमन जे पगारन में 100 सैकड़ो वादा करण जो मुतालबो लड़की भरसा रेलवे ट्रैक तां थियल औरत ऐं ॿार जे लाशनि जी सुञाणप थी वई। पुलिस मूजिबि पोती औरत जी सुञाणप रतदुर वासिन नादरा ज़ाल रसूल बख़्श जलबाणी ऐं ॿार जी सुञाणप संदसि पुट अली अदर जलबाणी जे नालनि सां थी आहे। औरत पंजाब वेंदड़ ट्रेन मां किरी फोत थी आहे। वाके बाबति वधीक जाच जारी आहे। मीरपुर बुरडो भरसा ॻोठ मोहम्मद सिद्दीक आराई में पसंदी शादी कंदड़ जोड़े वारे केस जी सिंध हाई कोर्ट सेकंड बेंच लारकाणा में ॿुधणी। अदालत नारी जे भाउ जी दरख़्वास्त रद्द कंदे मोहम्मद हसन बुरडो ऐं सिद्दरा चनो जी शादी खे जाइज़ ऐं क़ानूनी करार ॾेई छॾियो। अदालत धुरनि जा दलील ॿुधण बाद फ़ैसिलो जारी कयो।

0: वापदा जी इम्कानकारी खिलाफ मुलाज़मन जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। वापदा मुलाज़मन जो नानकाणो, हैदराबाद, भटियारी, नवाबशाह, कंदकोट ऐं राणीपुर में एहतजाज, खैरपुर, सखर, सेवण, दादू, चंडो आदम, पडीदन, सामारो में बि मुज़ाहिरा कया विया। वापदा जी निजकारी वारो फ़ैसिलो वापसि वठण जो मुतालबो। फैज़गंज तालुके में बदमनी ख़िलाफ़ महिराण हाईवे ते शहरनि जा टिनि हंधनि ते धरणा पुलिस जी ख़ातिरी ते ख़तम। शहरनि फैज़गंज तालुके में बदमनी ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे महिराण हाईवे जे टिनि हंधनि ते धरणा हया हुआ। मुजाहिरनि पुलिस सां ॻाल्हियुनि बाद धरणा ख़तम कया। तालुके में अमन बहाल कराइण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुन जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का।

थी। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
1: अदा? दुकान अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो पब्लिसिटी बार एड़ो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इस्तेमितला मजलिस सालगिरह जी मुबारक किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: नजगल सुरमन मेमन 380 83 47।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी

0: खुद बना गया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का हर तहसील में खुद पहुंचा हूं। आप समझे कि जो पिछला इलेक्शन कैंपेन है, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान का जगह जगह और दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है, ना गिलगित बल्तिस्तान का। मैंने देखा है जितने डिस्ट्रिक्ट में, जितने तहसीलों में मैं खुद हूं। मैं चैलेंज करूं कि आप जो भी सियासी जमातें पाकिस्तान के हैं, वो तमाम उनके दौरे मिला दे। वो भी सियासी जमातें पाकिस्तान के हैं, वो तमाम उनके मिला दे। फिर भी जितना हम खुद आपके साए हैं, उतना कोई और ये नहीं कह सकता। और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है, और इंशाल्लाह ताला ये साथ रहेगा। दिल कर भी रहा था कि इस इलेक्शन में भी मैं उसी अंदाज में कैंपेन चला दूं। ख्वाहिश तो ये था कि जैसे पिछले इलेक्शन में मैं मतलब पैदल चल के आया था, वैसे मैं इस दफा पैदल चल के दौरा करता। ख्वाहिश जरूर था, पर हालात कुछ और थे। पिछले इलेक्शन में तो खुशी का माहौल था, इस इलेक्शन में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक किस्म का शोक का भी माहौल है। तो ख्वाहिश यही था कि मैं बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट में गिलगित की तरफ भी हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही चलूं, मगर मैं इस इंतजार कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाकये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायनिस्ट कुव्वतों ने मतलब बच्चियों के स्कूल पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, जिस अंदाज से, जिस बेदर्दी से उन्होंने पूरा आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया रमजान के महीने में, उनके बच्चे, उनके नमसी साहब, तो इन हालात में मुनासिब नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। इंतजार में था।
1: रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
3: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202-0242460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-3992836।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पता लेना चाहूंगा मैं पूरा बल्तिस्तान डिवीजन जो मौजूद है, और इमरान साहब से बात से वादा लेता हूं कि आप किसान ने हाथ उठा के वादा करें। तमाम नुमाइंदे के हाथ खड़े हैं, मोहम्मद अली शाह साहब हाथ खड़ा करके वादा करें कि आप इन लोगों की मेहनत की वजह से, मोहब्बत की वजह से मेंबर जरूर बनेंगे, लेकिन मेंबर बन के आप इनको नहीं बोलेंगे, मेंबर बन के इनके सही मानों में खिदमत करेंगे, मेंबर बन के इनके दुख दर्द, इनके मसले मसाइल गिलगित असेंबली तक पहुंचाएंगे और मेरे कान तक पहुंचाएंगे, ताकि हम इनके इनके मसले के हल निकाल सके। ये आपके सामने वादा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी निभाएंगे और आपके साथ भी वफादार रहेंगे। तो जब इन सब ने आप किसान ने ये वादा लिया है, अब मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, बल्तिस्तान के आवाम से वादा लेना चाहता हूं, बल्तिस्तान के नौजवानों से जिन्होंने मेरे साथ मिलकर जिद्दोजहद करना है, बल्तिस्तान बुजुर्गों से जिन्होंने कायदे आवाम से लेके आज तक हमारे साथ ये रिश्ता निभाया है, बल्तिस्तान के माए बहनों से वादा लेना है कि 7 तारीख को बाहर निकले, 3 पे मोड़ लगाए, ताकि मैं और आप मिलके हमारा 3 नस्लों का साथ आगे लेके जा सके, ये जिद्दोजहद जारी रख सके। और कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामकमल मिशन को मुकम्मल करना है। ये आप पहली दफा मैं आसफा बीबी को साथ लेकर आया हूं, पहली दफा आसफा बीबी स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान में साथ आई है, और मैं जो आपने मुझे तो कभी मायूस नहीं किया, और मैं आसफा बीबी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि बल्तिस्तान डिवीजन भी इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं करेंगे। स्कर्दू का निशान क्या, निशान क्या, रोंदू का निशान क्या, खरमंग का निशान क्या, शिगर का निशान क्या, गांचे का निशान क्या, मेरा निशान क्या, नारे।
2: नाज़रीन स्कर्दू में चून जलसे के पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हो। संदस चवण है ॾींहं तरमीम वारा अख़्तियार गिलगित बल्तिस्तान खे बि मिलंदा त मसला हल थी वेंदा। हुन चयो आहे त अमीर खे वधीक अमीर करण वारी कहिड़ी मुआशी पॉलिसी आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे खे ख़िताब कंदे वधीक चयो गिलगित बल्तिस्तान जे वसीलनि ते हितां जे अवाम जो हक़ आहे जंहिंखे तस्लीम करणो पवंदो। गिलगित बल्तिस्तान वासन के वोट ज़रिए अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन हुकूमत जो फैसलो करणो पवंदो। हुन वधीक चयो आहे त ईरान सां गॾु समूरी दुनिया जंग जो बाल बर्दाश्त करे रहियो आहे। दुआ आहे त फील्ड मार्शल जूं जंग ख़तम करण वारियूं कोशिशूं कामयाब थियनि। پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسکردو میں چون جلسے کے خطاب کر رہے ہو.
0: رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: ஐரன் ஸ்டோர் ஹாலானி ஹோல்சேல் டிபு அ நேம் டு பீ ட்ரஸ்டட்
1: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல்பட்டி லோஹி தர்வாசா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ஐ ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரியா دستیاب ஆயின்
0: ஹானே யச்சு மெஹ்ரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ்த் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
1: ராப்தே லாய ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601 00
2: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جی خوش تو جہان خوش, جی آہی تو جہان آہی, صحت آہی تو سب کچھ آہی. چوندا ہن تندرستی ہزار نعمت آہی, بیٹھے جو سب کو کرے جو کیر بھی نہ ہے. تین کرے پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو. جی آہی تو جہان واہی, صحت واہی تو سب کچھ آہی. اسی ہمیشہ چوندا ہوں پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو, پینجے گھر وارن جو, پینجے خاندان جو, پینجے پاڑے وارن جو خیال رکھو. پروگرام صحت کی گال میں اسانجے اسٹوڈیو میں موجود آہن ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جکی صحت بابت معلومات دیندا آہن, معلومات دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسی خوش آمدید چوندا سی. تواں اساں دے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا. تواں کی اساں نمبر نوٹ کرائیں دے ہالوں تھا 0301-9196-51. پروگرام ہے صحت جی گال, جی مہراپور ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں دے سماعتن تے پہنچے پیو. 0301-9196-51 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे. तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था. डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. डॉक्टर साहब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि. का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो. गले जा गुदूद आहिनि, पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, हुनजो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो. अधु रंगो आहे, अधु मथे जो सूरु आहे, सॼे मथे सूरु आहे, कीड़ो बि पुराणो, जोड़नि जो सूरु आहे, संदनि जो सूरु आहे, कुंदरग जो सूरु आहे, अव्हांखे दिलि जो मर्ज़ु आहे, फॉलिज आहे, खंघि आहे, टीबी आहे, मादे जी तकलीफ़ आहे, अव्हां का बि शइ खाओ था अव्हांखे उल्टी अचे थी, यानी मादे जी अल्सर आहे, तिरी अव्हांजी वधी वई आहे, जिगर जूं बीमारियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो. या जेके मर्दनि ऐं औरतुनि जूं पोशीदा बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो. 0301-9196-51 तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था. डॉक्टर साहिब खे असां सभ खां पहिरियां पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चऊं था. डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो, तबियत ठीकु आहे?
1: जी साईं, अलाह ताला जे सां.
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت اسان جے موجز بدھندڑن کے جان دیندا, پنجو لائیو کال جو نمبر بھی بدھائندا, پنجا ڈی بھی بدھائندا, کیڑا کیڑا ڈی اواں کلینک تے ویندا ہو, کڑن میں مریضن جو علاج کریو تھا, اواں جی جے چیک اپ فیس آہے وہ مفت کیڑے ڈین میں آہے؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. پہرے تے سب تعریف ہون رب پاک چوں جے کو اساں کھے جارے تھو, خرائے تھو, روزی دیے تھو, خوشی دیے تھو, اے سبنی زمینی آسمانی آفتن کھا محفوظ رکھے تھو. असल प्रोग्राम सिंह जी ॻाल्हि अव्हांखे ख़बर आहे त बर वक़्त हिन टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे, ऐं उन खां अलावा असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक हफ़्ते जा 6 ॾींहं मेहरापुर शहर में मौजूदु हूंदा आहियूं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजो चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे, जुमो छंछरु आचरु. उन खां अलावा अङारे जो ॾींहुं छुटी हूंदी आहे, बक़ाया ॿिया ॾींहं जेको आहे समूरा क्लिनिक ते हूंदा आहियूं. ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त जंहिं ॾींहुं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, बक़ाया दवाऊं जेको आहे सो मरीज़ खे स्टोर तां वठणी पवंदियूं आहिनि. क्लिनिक जो एड्रेस अव्हांखे ख़बर आहे त कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे. टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदी आहे. अहिड़े तरीक़े सां जेकी रूटीन जे मुताबिक़ ख़बर आहे जेके असांजे प्रोग्राम में मौज़ूआत हूंदा आहिनि, नंढियूं नंढियूं बीमारियूं या वॾियूं वॾियूं जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में अवेयरनेस ॾियणु, असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु बि इहो ई हूंदो आहे त अवेयरनेस ॾींदा आहियूं, त चाहे कहिड़ी बि बीमारी हुजे या उन जे मुतालिक़ ॼाण या उन जे मुतालिक़ कहिड़ा टोटका हूंदा आहिनि या जहिड़ो इलाजु हूंदो आहे उन जे बारे में ॾस वग़ैरह ॾींदा आहियूं. अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसंदा आहियो त ख़ासि तौर ते छो जो गुज़िरियल प्रोग्रामनि करण खां बाद में असांखे जेके फीडबैक मिलंदा आहिनि या वरी असां वटि SMS वग़ैरह ईंदा आहिनि त हिन बीमारी जे बारे में असांखे ज़रूरु अवेयरनेस ॾींदा, त अहिड़े तरीक़े सां या उहे केस जेके असां ॾिसंदा आहियूं त रोज़मर्रा जे हिसाब सां क्लिनिक ते जेके वधीक पेशंट्स ईंदा आहिनि त सम्झंदा आहियूं त हिन बीमारीअ जी ॼाण हुजणु असांजे आवाम के ज़रूरी है। अड़ी तरीके से मुझे क्लिनिक ते भी हिंसर गुजरियल डीन में जो केसिस ज्यादा दिसण में आया वे ये होंदा जी अजकल जी खोड़ सारा पेशेंट इंदा जिनके डकनी की बीमारी होंगी है, यानी ये समझो तो जिन जहाँ आसाब कमज़ोर थी वा या जिन रगू कमज़ोर थी वेंद्य बेसिकली वह बीमारी जो है सो जे बारे में बुधाईंदी तो वह बीमारी छो थी है वह बीमारी के चबो है या उन बीमारी जी वे तो उनका घुर्ज एक्चुअली इन बीमारी के जो मेडिकली नेम हों वो चबो है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज एक्चुअली जो है सो अंग्रेज डॉक्टर हुए जेम्स पार्किंसंस उन जैसे उन तशखीस कई सो उन बारे में जैसे खोजना कई तो इन उनमें सफल वो यानी कामयाब वो तो इन के उन मान में उन बीमारी के नालो भी उनको हल कढ़ इन के नालो भी पार्किंसंस डिजीज रखो वो एक्चुअली उनके चबो है यानी डकनी की बीमारी। डकनी की बीमारी ये थी जो सवली सिंधी में समझाऊँ तो जो दिमाग जहाँ सेल्स हूँ उ डेथ थे शुरू थी वादा जे असो न्यूरो ट्रांसमीटर हों असो डोपामिन जैसे चूँ वो केमिकल रिलीज कर बंद कर वो है यानी उनके सेल्स जो सो कम न क्या उन सेल्स डेथ थे कम न करण के कर बीमारी या थी है जो डकनी थी वी है जान में डकनी रही है यानी जो एसाब हूँ जिसम जहाँ वे ढीला थी वादा तो जिसम पान से कंट्रोल न कर सकता है वो कड़ी भी उम्र में कंखे भी थी सके थी उम्र के भी थी सके थी मर्द के भी थी सके थी जैसे वह बीमारी थी वी है तुम दिखो हों खास कर के ये बिल्कुल वेठा हूँ लेकिन जन मल लिखण शुरू कह तो उनको हथ जो है सो पे कंट्रोल में न रो है उनकी पेन जो है सो यानी सही तरीके से लिखी न सकती है यानी उनको हथ सही जो है सो कम न कह या जन मल गाला तो उनको कंध जो है सो लुदन है हल्दा त वो एक पास हों मू वो बे पास हलो वो है कदें कदें छो जो मुख्तलिफ़ टाइप्स होंदा को पछाड़ी में गालाहण में भी जो है सो घना हिब कंदा गाले भी सही न सकता सो इन ही बीमारी के जो सो पार्किंसंस डिजीज चो है छो जो हिस्ट्री तमाम घनी है ये एक नंढो प्रोग्राम हों जो जो कॉल्स भी असणी होंदून उनखा जो है सो मकसद सिर्फ यो हों आवाम तीन यह गाल पहुँचाणी होंगी है तो ये बीमारी छो थी है जैसे थी वजे तो इनको हल कड़ो है इनको हल यो ही है तो मेडिकल में इनकी ट्रीटमेंट घना दोस्त जो बेचारा पेशेंट्स हजरात हूँ कराई लेकिन साल हा साल दह दह साल वी साल इन मर्ज़ में रहा बेचारा ठीक न थी सकता अलहमदिल्ला अल्लाह ताला जा करोड़े एहसान हैं अल्लाह ताला जी जाती शिफा दियण वाली है छो जो कें भी डॉक्टर के हथ में कुछ भी न हों इन असाज हथ में भी कुछ न हों अल्लाह ताला जी जात जो सो शिफा दियण की होंगी है अड़े तरीके से होम्योपैथिक में अड़ी दवा मौजूद हैं जी अस पेशेंट्स के जैसे इस्तेमाल करींदा अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो पेशेंट जो है सो आस्ते आस्ते बिल्कुल उनमें रिकवरी इंदी वी है वो पेशेंट जो दह साल वी साल वी जो डकनी की बीमारी में हों सही पान से फोकस न कर सकता है पान से खुद इतमादी उन खत्म थी वी है वह उनकी खुद इतमादी वापस अची वी है वो बिल्कुल सही थी वो है अगे का जो है सो बिल्कुल आम मूँ वागुर जो है सो बिहेव कर शुरू कर लगन है यानी यह जो है सो उन रिकवरी थे शुरू थी है यो सिर्फ सिर्फ होम्योपैथिक दवा रस्ते हूँ भी होम्योपैथिक दवाओं में अल्लाह ताला शिफा रखी है हर मर्ज के हवाले से जी अवे प्रोग्राम की शुरुआत में बुधाई तो कड़ो भी मर्ज हो चाहे मैदे की तकलीफ है चाहे नक की हड्डी वधी वे या गोश्त अची वे तो उनको भी या एलर्जी पुरानी रही है जैसे कर निछू इंदून तो उनको भी कामयाब इलाज अस बगैर ऑपरेशन के मौजूद होंगे घर टॉन्सलाइटिस गले जहा गदूर जैसे गले जहा गदूर थी वादा तो उनको भी कामयाब इलाज अस मौजूद होंद होम्योपैथिक दवा रस्ते उन खां अलावा जेके ऑपरेटेड डिज़ीज़ मिसाल जिन जे के अहिड़ा केस जिन जा सिर्फ़ु ऑपरेशन ई हूंदा आहिनि, मिसाल किडनी स्टोन्स आहे, गाल ब्लेडर स्टोन आहे, यानी पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, त उनजो बि असां वटि बग़ैर ऑपरेशन जे जेको आहे सो 15 mm जी पथरी हुजे चाहे 20 mm जी पथरी हुजे, अल्ला ताला जी महिरबानी सां उहा हुन सां जेको आहे सो जेकी गुर्दे जी पथरी हूंदी आहे निकिरी वेंदी आहे, पिते जी पथरी हूंदी आहे उहा हुन में ॻरी ऐं ख़तमु थी वेंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां पुराणो जोड़नि जो सूरु हूंदो आहे, शैटी का पेन हूंदो आहे, कुन रॻ जो सूरु जेको आहे सो उहो बि उनजो बि कामयाबु इलाजु होम्योपैथिक में मौजूदु हूंदो आहे। रॻुनि जी पुराणी चाहे बीमारी आहे जिन जी जेको आहे सो नज़र घटि हूंदी आहे या जेके घटि ॿुधंदा आहिनि या जिन जे कननि में आवाज़ु ईंदो आहे, ब्लड प्रेशर जी तकलीफ़ हूंदी आहे, मैदे जी तकलीफ़ हूंदी आहे, पुराणी अल्सर हूंदी आहे, गैस जी तकलीफ़ हूंदी आहे, पुराणी कब्ज़ी जी तकलीफ़ हूंदी आहे, त उहा बि अलाह ताला जी महिरबानी सां होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां पेशेंट ठीकु थी वेंदो आहे। जिन ॿारनि जो कदु न वधंदो आहे, अल्ला ताला जी महिरबानी सां असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक खे इहो एज़ाज़ हासिलु आहे त असां वटि क्लिनिक ते खोड़ सारा पेशेंट नंढा ॿार वीचारा जेके या जेके नंढियूं असांजूं हूंदियूं आहिनि भेनरूं जिन जा कदु जेको आहे सो नंढा हूंदा, अल्ला ताला जी महिरबानी सां जॾहिं खां असां उन्हनि खे होम्योपैथिक दवाऊं ॾिनियूंसीं उन्हनि जा कदु जेको आहे सो पंहिंजे लेवल ते जेको आहे सो अची विया, या जेके उहे नंढड़ा ॿार हूंदा हुआ जेके हली कोन सघंदा हुआ या साॻाईंदा न आहिनि उहे बि अल्ला ताला जी महिरबानी सां बिल्कुलु ठीकु थी विया। अहिड़ी तरीक़े सां जेके अदड़ियूं जिनखे मोहिड़ा हूंदा आहिनि कन या नक जेके दाणा थी वेंदा आहिनि ऐं या जिन जा वार जेको आहे सो छणंदा आहिनि उहो बि होम्योपैथिक दवा जे रस्ते बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां चाहे ॿियूं जेके बि मौसमी बीमारियूं हुजनि, टाइफाइड फीवर आहे या मलेरिया जेके कंहिंखे थी वेंदी आहे या हेपाटाइटिस या फैटी लिवर जेको आहे सो घणनि खे अॼुकल्ह फैटी लिवर हू बि जेको आहे सो आम आहे जो घणा माण्हू जेको आहे सो सणभ खाइण जा तमामु घणा शौक़ीन आहिनि ऐं सणभ इस्तेमालु कंदा आहिनि जंहिंजे करे जेको आहे सो या असांजे रुटीन में चहल पहल तमामु घटि आहे जंहिंजे करे बि जेको आहे सो पोइ फैटी लिवर थी वेंदो आहे, अहिड़ा खाधा इस्तेमालु कंदा आहियूं जंहिंसां जिगर ते जेको आहे सो चर्बी अची वेंदी आहे, पोइ उनजो बि असां वटि कामयाबु इलाजु मौजूदु हूंदो आहे। या इवन जेको आहे सो किनखे हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी थी वञे थी उनजो बि कामयाबु इलाजु मौजूदु हूंदो आहे। जी सर,
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजी समातुनि में पहुचे पियो। असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु जेके दोस्त फेसबुक ज़रिए असां सां गॾु आहिनि उन्हनि जूं बि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि। खेन उन्हनि खे बि दिलि वजान सां ख़ुशि आमदीद चऊं था। खोड़ो शरीफ़ नौशरो फिरोज़ खां मखदूम पीर मियां नूर मोहम्मद कुरैशी साहिब जूं महिरबानियूं असां सां गॾु आहिनि, चवनि पिया तमामु बहितरीन प्रोग्राम आहे डॉक्टर साहिब जो ऐं डॉक्टर साहिब खे सलाम चवनि पिया। साईं तव्हांखे पेशंट आहे असांजो,
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: चइबो ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे, डॉक्टर साहिब जा जेके टोटका आहिनि उहे ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि, असीं उन्हनि ते अमल कंदा आहियूं।
1: महिरबानी
0: दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेकी बज़रिया लाइव का लाइव असां सां गॾु आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेकी लाइव कॉल ज़रिए अव्हांखे मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब ॾींदा, अव्हांखे ॼाण ॾींदा। 0301-2196-851 ऐं हिकु ॿियो नंबर आहे 0301-3998-2836। तव्हां असांजे कंहिं बि नंबर ते कॉल करे सघो था 0301-2196-851 ऐं 0301-3998-2836। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो। मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहियूं डॉक्टर साहिबु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ऐं स्टोर साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि, जिते कराची ऐं इस्लामाबाद जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि। होम्योपैथिक डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाबशाह, एम एन डी एच एम एस सिंध, आर एच एम बी इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और फैमिली फिजिशियन। गुर्दे में पथरी है, अवं के पिते में पथरी है, मसान की पथरी है, उन्होंने बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो। संदन जो सूर है, जोड़न जो सूर है, गोडन जो सूर है, नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो, मथे जो सूर है, अध मथे जो सूर है, नज़र की कमजोरी आ, कन अवं वह तो, कन जो सूर है, घट बुधण में अचे तो, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल जहा मर्ज आन, फाल की खंग, टीबी, मादे जो सूर, मादे की अल्सर, तिरी जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, औरतुन में वजन जो न वधण, औरतुन में मर्दन के पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो। सुरते नारे वाले पास अग में ये थी तो माना जित उते थोड़ी भेटू आन पर वण जो न होजन या किए तो माना उते इलाही काफी मानु बेचारा मरन भी सही जो आ
1: बिल्कुल
0: आई अग में थिंदो हियर त अन्या एकडो नो दौर अच या पुराने दौर में बुधाइना तो माना पानी भी के मा मर जो
1: बिल्कुल
0: ये भी थिंदो वो रेगिस्तान हो रेगिस्तान वाले इलाको आजकल नारो भी या जो सो थर रहे उते भी घणी तरक्की जो सो थी चुकी है फर्क अची वयो है। ये वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो, पहले हलूँ था कमर्शियल ब्रेक की तरफ। गदगद जो बुधंदा रहो जी मेरा पर एफ एम 94।

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद जो वाहिद प्रोग्राम है जो हर गरीब ताई पहुंचो है। बदकिस्मती से हुकुमरान बीआईएसपी के खत्म करना चाहन था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खिलाफ साजिशू नाकाम थी दियूं। असा बीआईएसपी के बचाईदी बजट में वजीर आजम का बीआईएसपी की फंड्स में वाद कराईदी। इसकर्दू में चूंड जलसे के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण हो ही आइनी तरमीम वारा अख्तियार गिलगित बल्तिस्तान खे भी मिलंदा तो मसला हल थी वेंदा। अमीर के वधीक अमीर करण वारी कहड़ी मौशी पॉलिसी है? गिलगित बल्तिस्तान के वसीलन से इतां के अवाम जो हक है जैके तस्लीम करणो पवंदो। गिलगित बल्तिस्तान वासिन के वोट जरिए अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन हुकूमत जो फैसलो करणो पवंदो। ईरान से गड समूरी दुनिया जंग जो बार बर्दाश्त कर रो है। दुआ है तो फील्ड मार्शल जो जंग खत्म कराने वाली कोशिशों कामयाब थे। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कम छो नाहन थे। 2015 ईस्वी में 100 अरब डॉलर देने बावजूद अजा तीन दयामीर बादशाह डैम छो ना टो। बिजली की लोड शेडिंग छो खत्म ना थी। 2018 ईस्वी में हुकूमत खत्म न थे हा तो मुल्क घनी तरक्की करे वे हा। गिलगित में चूंड जलसे के खिताब कंदे अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ चयो तो कहीं तनकीद करे या बुराई करे वोट वठन नाहां आयो। असांजी पार्टी खां सवाए कहीं गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत कई आहे तो बुधायो। ब्या मनसूबा अञा ताई मुकम्मल नाहन थिया।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले औ बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
2: ईदर ते सिर्फ चाहे नाहे ठांदी महफिलों सजंदियो हैं। टपाल मेजबान ईद उल अज़हा जो असली मेजबान।
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3569।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड सर्विस जिते होंडा

0: कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी है मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808743
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
1: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी 3003204372 आई 0242460100।
3: उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मैं तजुर्बे

0: बुझी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजपुर, 8865453।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तौजूद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014541456 तौकीर अहमद 03016।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन जी खारिश फट दन और जो नबनी बीमारी जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट और जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03-180-003
0: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती वगैरह बाजार
0: हालाणी
2: राबते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
3: अब अपलाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-338-569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-801।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।